दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रोमांच लगातार परवान चढ़ रहा है। कोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों की जुनून, दर्शक दीर्घाओं में लहराते तिरंगे और शानदार रैलियों पर दर्शकों की तालियों ने भारत की मेजबानी को और भी खास बना दिया है। बेशक पांच बार की विश्व चैंपियनशिप की मेडलिस्ट पीवी सिंधु और छुपेरुस्तम साबित हो रहे आयुष शेट्टी की चुनौती भले ही थम गई हो, लेकिन भारतीय बैडमिंटन की तस्वीर अब भी उम्मीदों से भरी है। युगल में भारतीय खिलाड़ी अब भी पदक की रेस में डटे हैं। दिल्ली की धरती पर अपने ही दर्शकों के सामने अब भारतीय शटलरों के पास हार की निराशा को पीछे छोड़कर नए जोश के साथ आगे बढ़ने का मौका है, क्योंकि चैंपियनशिप अभी बाकी है और भारत की उम्मीदें भी।

0: विश्व चैंपियनशिप के चौथे दिन महिला युगल में त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद का शानदार अभियान क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया। त्रिशा गायत्री ने प्री क्वार्टर में आज जापान की रेन इवांगा और काई नाकानिशी की जोड़ी को 21-16, 21-12 से हराया। पहले गेम में भारतीय जोड़ी ने 21-16 से जीत हासिल की। दमदार स्मैश और बेहतरीन क्रॉस कोर्ट रिटर्न से दबदबा बनाए रखा। जापानी जोड़ी दूसरे गेम में बिल्कुल रिदम में नहीं दिखी, ज्यादातर शॉट गैलरी और बैक लाइन के बाहर गिरी। हालांकि त्रिशा गायत्री ने नेट पर कई अंक गवाए भी। गायत्री ने माना मुकाबला काफी कड़ा था, शुरुआत में शॉट सही नहीं पड़ रहे थे।
1: इनिशियली was a pretty neck to neck, but then I think we looked to our coaches and they gave us some tips. So I think we were attacking a lot more in the second half of the first game and the second set. Yeah, it worked in our favor. दो तीन पॉइंट के बाद समझ आया कैसे खेलना है।
0: पहले गेम के बाद दूसरा गेम भारतीय जोड़ी के लिए आसान रहा। त्रिशा ने कहा कोच के गुरुमंत्र बेहद काम आए।
1: They gave us a few tips that were really helpful mentally and physically. We implemented it. He just told us to stay calm, focus on attack.

0: समझ आया कैसे खेलना है।
1: पहले गेम के बाद दूसरा गेम भारतीय जोड़ी के लिए आसान रहा। त्रिशा ने कहा, कोच के गुरुमंत्र बेहद काम आए।
0: They gave us a few tips that were really helpful mentally and physically. We implemented it. He just told us to stay calm, focus on attack.
2: And we just want to take it more focused and everything. We came here with a goal and we are focusing on that.
1: आपसी तालमेल के बारे में त्रिशा ने कहा कि अपनी कमजोरी और ताकत को बेहतर जानते हैं।
2: The rotation and the attacking, it's one of our strength. While playing also, it's really working. When we are leading also, like a little bit calm, because at this level we need to be really calm and just be in that moment. Every point is matters.
1: महिला एकल में भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु का सफर प्री क्वार्टर में चीन की वेंग जी के सामने थम जरूर गया, लेकिन रैंकिंग में अपने से बेहतर और उम्र में अपने से 5 साल युवा चीनी खिलाड़ी के खिलाफ सिंधु ने दिखा दिया कि 31 साल की उम्र में भी उनमें पुराना जोश और दमखम अभी बाकी है। सिंधु को 3 गेमों के कड़े मुकाबले में 21-11, 15-21, 21-17 से हार का सामना करना पड़ा। पहले गेम की शुरुआत में सिंधु पिछड़ रही थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने रफ्तार पकड़ ली और स्कोर 7-7 कर दिया। लेकिन चीनी खिलाड़ी के तर्कश में विविधता भरे शॉट थे। पहला गेम वेंग जी ने 21-11 से जीत लिया। घरेलू दर्शकों के समर्थन ने सिंधु में नई ऊर्जा भर दी। दूसरे गेम में सिंधु का प्रभाव पूरे उफान पर था। उन्होंने 3-0 की बढ़त ली और फिर उसे 7-2 कर दिया। हालांकि वेंग ने वापसी की और स्कोर 15-15 की बराबरी पर ले आई, लेकिन सिंधु उस मिट्टी की नहीं बनी जो आसानी से हार मान ले। दूसरा गेम 21-15 से जीतकर उन्होंने मैच में वापसी की। निर्णायक गेम में कांटे की टक्कर हुई, 5 बार तो स्कोर बराबरी पर आ टंगा। पहले 9-9, फिर 13-13, फिर 15-15, 16-16 और 17-17। कोई हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन ऐसे में वेंग की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। लेकिन मेडिकल ब्रेक के बाद वे फिर कोर्ट पर उतरी, लेकिन जल्द ही फिर इंजरी की शिकायत की। पर दर्द के बावजूद डटे रहने का फैसला किया और अंतिम 2 अंक लेने के बाद जीत हासिल कर कोर्ट पर लेट गईं। सिंधु ने माना मुकाबला बेहद कड़ा था, लेकिन उन्हें और संयम की जरूरत थी।
3: थोड़ा और पेशेंस रहना था मेरे साइड से। बहुत अच्छा चल रहा था गेम 1, गेम 2 और गेम 3 भी बहुत इक्वल चल रहा था। इन द ओवरऑल गेम लाइक स्पेशली इन द एंड, बिकॉज आई कांट सी एनी लूप होल्स इन बिटवीन द पॉइंट्स, द लास्ट 3 पॉइंट्स जस्ट चेंज द गेम इज व्हाट आई फेल्ट। आई शुड हैव बीन लिटिल पेशेंट, दैट्स व्हाट आई कैन सी फ्रॉम टुडेज गेम। एंड व्हेन यू लूज यू नीड टू डील विद इट एंड बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर फ्रॉम योर मिस्टेक्स।
1: पुरुष युगल में सात्विक रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को प्री क्वार्टर में उतरने का मौका मिल ही गया। पहले दौर में उन्हें बाई मिला था और दूसरे दौर में स्कॉटलैंड की जोड़ी चोट के कारण हट गई थी। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीत चुके सात्विक चिराग ने मलेशिया के जुनेदी आरिफ और येप रॉय किंग को 3 गेम के मुकाबले में 21-23, 21-19, 21-17 से हराया। रोमांच के शिखर तक पहुंचे मुकाबले के बाद दर्शकों का जोश पूरे आईजी स्टेडियम में गूंज उठा। सात्विक चिराग ने रोमांचक जीत के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा,
4: जब भी हम कोर्ट पे जाने वाले थे पक्का सोचा था कि ऐसा होने वाला है, टफ होगा, इट वोंट बी इजी, थोड़ा कोर्ट कंडीशंस भी डिफरेंट रहेगा। वी वर रेडी फॉर इट, वी वांट प्लेइंग एट आवर बेस्ट, वी हैव टू प्ले द राइट काइंड ऑफ गेम, बिकॉज इफ यू कीप इट सिंपल इनसाइड द कोर्ट पॉइंट्स आएंगे। वी न्यू लाइक वी वांट प्लेइंग एट आवर बेस्ट, बट देयर हैव बीन सिचुएशंस इन द पास्ट वेयर वी हैव नॉट प्लेड एट आवर बेस्ट, बट वी हैव गॉट बैक and I think we just try to tell each other that eventually things will turn into your favor, just keep it simple, keep it inside the court and don't really complicate things.
1: भारतीय खिलाड़ियों के अन्य मुकाबलों की बात करें तो युवा शटलर आयुष शेट्टी का स्वप्निल सफर प्री क्वार्टर में इंडोनेशिया के 11वीं वरीयता प्राप्त अल्वी फरान के सामने 21-19, 21-11 से थम गया। आयुष ने शुरुआत में 3 अंक बटोरकर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद फरहान ने वापसी की और स्कोर 7-7 पर ले आए। दोनों खिलाड़ियों के बीच 1-1 अंक बटोरने को लेकर कड़ी जद्दोजहद चली। मैच पेंडुलम की तरह कभी आयुष और कभी फरहान के पाले में झूलता नजर आ रहा था। अंत में इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने पहला गेम 21-19 से जीत लिया। दूसरे गेम में आयुष फरहान के बीच फिर कड़ी टक्कर हुई, लेकिन फरहान ने अंततः 21-11 के साथ दूसरा गेम और मैच अपने नाम कर लिया। आयुष ने माना कि पहले गेम में मौके थे, लेकिन वह इसे भुना नहीं पाए।
5: He was playing really sharp today. I had my chances in the first game, couldn't convert it. And I think second game he was playing with more confidence and he was putting a lot of pressure from the net. I think that made the difference. Definitely he was not giving much chance, but I think when I had my chances, I was not really sharp getting the lines. That made a lot of difference, I would say. He played much better badminton and he was the better man.
1: आयुष के खिलाफ जीत हासिल शामिल करने वाले फरहान ने कहा,
6: I know I used to have a lot of pressure because he playing in a home show, right? That's why I mean I took that for my motivation and I'm just gonna be like when I was leading I'm just gonna be present and just think that only one by one. So I think that's the main point.
1: कहते हैं खेल में कोई हारता नहीं।

0: है या तो जीतता है या सीखता है। विश्व चैंपियनशिप के मंच पर आयुष शेट्टी की तीसरे दौर में हार के साथ चुनौती जरूर टूट गई, लेकिन अपने पहले ही मुकाबले में दुनिया के नंबर एक शी युकी को हराने वाले भारत के इस युवा खिलाड़ी ने साबित कर दिया प्रतिद्वंदियों को उन्हें हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और तनिषा की जोड़ी को चीन की दुनिया की छठे नंबर की जोड़ी गुआ चीन वा और चैन फेंग ने 21-16 21-5 से हरा दिया। इस जोड़ी ने माना कि वे चीनी जोड़ी की तेजी का सही ढंग से सामना नहीं कर पाए।
1: हमारे हाथ में बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं था, उन्होंने पूरा मैच काफी अच्छे से कंट्रोल किया था। यही कहना चाहूंगी हमारे साइड से बहुत गलतियां हुई है, उनको काफी इजी पॉइंट्स मिल गए थे, हमने बहुत ज्यादा मिस्टेक्स किया, उसकी वजह से मैच ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत इजीली मैच जीते हैं।
0: तनिषा ने कहा कि वे अपनी गलतियों पर काम करेंगे और मजबूत वापसी करेंगे।
1: इट्स सर्टेनली वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट वी आर आउट ऑफ द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, बट आई थिंक आई जस्ट लाइक टू टेल माय सेल्फ एंड ध्रुव दैट दिस इज नॉट द लास्ट मैच एंड दैट वी हैव सो मेनी मोर मैचेस टू गो। इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, इट्स डिसअपॉइंटिंग, बट वी हैव मच बिगर इवेंट्स कमिंग अप। द ओनली थिंग आई कैन टेक बैक फ्रॉम दिस मैच इज अ लॉट ऑफ लर्निंग। वी गॉट टू गो बैक, वॉच आवर मैचेस, लर्न अ लॉट फ्रॉम इट एंड प्रिपेयर बेटर, कम बैक बेटर, एंड आई एम श्योर देयर विल बी अ विन इन आवर बैग।
0: भारत के अलावा अन्य मुकाबलों की बात करें तो महिला एकल में दुनिया की नंबर एक दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने डेनमार्क की मिया बिलिच फेल्टेट को 21-16 21-10 से हराया। पुरुष एकल में 2021 के विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोह किन यू को कनाडा के विक्टर लाई ने 22-20 21-18 से पराजित कर दिया। पिछली विश्व चैंपियनशिप में विक्टर ने लोह किन को हराकर ही कांस्य पदक जीता था। पुरुष युगल में दुनिया की नंबर एक और पिछली चैंपियन जोड़ी दक्षिण कोरिया के किम हॉन हो और सो सुयुंग जो ने इंग्लैंड के बेन लेन और सीएन वेंडी को 21-13 21-16 से पराजित कर दिया। महिला एकल में पूर्व चैंपियन जापान की नोजोमी ओकुहारा ने भारतीय मूल की अमेरिकी खिलाड़ी इशिका जयसवाल को 21-11 13-21 21-12 से हरा दिया। इसके अलावा चौथे दिन डेनमार्क के रास्मस गेमके ने तीसरी वरीयता के जोनाथन क्रिस्टी को 11-21 21-13 21-18 से हराकर उलटफेर कर दिया। अब पांचवें दिन सात्विक चिराग का सामना क्वार्टर फाइनल में चीन के लियांग वेई कैंग और वांग चेंग से होगा, जबकि त्रिशा और गायत्री की भारतीय जोड़ी चीन की जिया यी फेन और झांगशू जियांस के साथ खेलेगी। महिला एकल में दक्षिण कोरिया की एन शे यंग के सामने चीन की हान यूई होंगी और पुरुष एकल में एंडरसन का सामना जापान के कोदई नाराओका से होगा। भारत की पदक की उम्मीदें अब युगल मुकाबलों पर हैं। देखते हैं अपनी मेजबानी में पदक के लिए जुगलबंदी कितनी कारगर रहती है। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ मैं नवीन कुमार शर्मा।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखनी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
0: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
2: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
0: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
2: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गांव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
0: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
2: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा बसंती बाई और गणेश शिवदे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए।
2: जी,
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग।
2: जी,
0: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
2: बिल्कुल।
0: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
2: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं। ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
0: श्रोताओं, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
2: तो करते हैं शुरुआत कहानी की।
0: जी।
2: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
0: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया।
2: जी।
0: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
2: वो वही खाता जो मुर्गियाँ खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता। और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
0: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है।
2: जी।
0: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
2: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
0: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
2: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं। इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजीत जी, फिर क्या हुआ, क्या बाज कभी उड़ पाया?
0: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुट कुट करता रहा।
2: जी।
0: पता है, उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी।
2: जी।
0: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था।
2: जी।
0: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
2: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
0: श्रोताओं, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते।
2: जी।
0: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो।
2: जी।
0: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओं, होता ये है कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी

0: क्षमता भूल जाते हैं।
1: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
0: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
1: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा, जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
0: और श्रोताओं, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
1: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
0: तो हम कहना चाहते हैं,
1: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए, और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए क्योंकि
0: आप हैं।
1: बिल्कुल।
0: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी श्रोताओं, यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं,
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
1: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
0: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूं तुम्हारी दोस्त झुमकी,
3: और मैं हूं झुमरू।
2: नमस्कार।

0: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर? जल बचाओ।
0: तो झुमकी क्यों?
1: वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
2: जी झुमरो जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ।
3: रखो तुम नल हरदम।

0: जब उपयोग जल की एक एक बूंद का सदा करो सदुपयोग।
1: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला कभी ना छोड़ो, नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।
2: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
1: हाँ,
3: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
0: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
1: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
2: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
0: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: जैसे?
0: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
1: बताओ बताओ।
0: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
1: ठीक है।
0: बताओ।
3: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें, तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
0: और
2: यदि बनना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
0: हाँ, बहुत अच्छे।
1: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
3: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार तालियां।
1: अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
4: मेरे पास बहुत बड़ी पैसे।
1: अरे वाह।
0: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना? बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
4: जल।
1: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता। लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुख मिलाने वाली।
0: आपने तो मेरे मन की बात कह दी।
1: तो,
0: चलिए
1: शुरू हो जाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
1: हाँ, बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चो, अब तुम्हारी बारी है।
4: जीवन सुखद बनाएंगे।
0: जीवन सुखद बनाएंगे।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
4: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
5: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।

0: आशिकी का वो जमाना याद है। सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस 1875 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हजरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजादी के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दुए मौल्ला में एक मजमून की इशात पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैदे बामशक्कत की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबो रोज गुजारे उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।
1: कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, घरचे सामान सहर का था ना इफ्तारी का।
0: कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
2: जी आदाब, बजा लाता हूँ जनाब मोहानी की खिदमत में।
1: अरे आप, आदाब अर्ज, आइए आइए, तशरीफ रखिए।
2: जी जी, शुक्रिया।
1: माफ कीजिएगा, जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ।
2: कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें।
1: जी बस।
0: जी, हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था। वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
1: जनाब बस जरा सी देर और बस, यूं समझिए खत्म ही हुआ चाहता है।
2: जी जी, आप इत्मीनान से काम करें, बाखुदा मैं मजे में हूं।

0: ये थोड़ा सा अजीब है। लिख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कैसे पूछूं?
1: जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया,
0: मोहानी साहब
2: जी,
0: ये पर्दे की ओट से निकाल कर आप क्या खा लेते हैं? कुछ खादिम को भी आता हो?
2: चलिए, फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
0: क्या मतलब?
1: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थीं।
2: ये लीजिए, खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
0: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
2: आज तीसरा फाका है। शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
0: या खुदा,
2: नौश फरमाइए मियां,
0: लाइए।
3: हम मशकूर हैं उन तमाम शूरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
1: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शूरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
4: लिख दिया।
2: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाए।
5: इरशाद ग्रामी
2: है, मश्के सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी।
4: वाह क्या बात है, मश्के सुखन जारी,
2: चक्की की मशक्कत भी।
4: वाह,
2: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी।
4: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत। क्या बात, क्या बात।
1: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
4: जना, क्या खूब गजल कहते हैं आप।
0: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
4: मोहानी साहब, आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये लिफाफा हमारी तरफ से।
0: जी नहीं नहीं नहीं, मोहानी साहब, ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
2: माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए।
0: नहीं, दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
4: क्या?
0: जी,
2: एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया, टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
0: अरे मार साहब,
2: शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब, चंद अशार सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाए।
4: आप भी मोहानी साहब। लेकिन मोहानी साहब, नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो दें।
2: नहीं नहीं, माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी। मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे?
0: मोहानी साहब, खामखा खर्च कैसा?
2: देखिए जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
4: मोहानी साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
1: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया।